0: सॉरी मुबारकबाद देना चाहूंगी, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन, एंड ऑल्सो ये पूछना चाहूंगी कि प्रेशर कितना बढ़ गया?
1: देखें, दो डिफरेंट चीजें हैं, एक सहाफत और एक सहाफत के अंदर सियासत. तो जब हम सहाफत की बात करते हैं, एज वी ऑल नो दैट इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट, यानी तीन पिलर्स जो हैं, आप जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो कामयाब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि तीन जो पिलर्स हैं, यानी जो उनकी जुडिशरी है, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो उनकी एग्जेक्टिव है, यानी लेजिस्लेटिव एक कानून बनाती है, एग्जेक्टिव जो है वो उस पर अमल करवाती है, और जुडिशरी जो है वो जो अमल नहीं करता उसको जजा और सजा देती है. सो जो चौथा सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया बनता है. सो जब आप मीडिया में ऑलरेडी हैं, यानी एक सुतून को संभाले हुए हैं, उससे पैरेलल आपने फिर एक सियासत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ता है, बहुत सारी दोस्तियां हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है. यानी अब आपने, जब आप सहाफी हैं, जब आप सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिक्स है, तो वो कदरे आपके लिए आसान हो जाता है, आपकी एक ग्राउंड है उसमें आपने खेलना. लेकिन वंस यू आर अ जर्नलिस्ट प्लस अ पॉलिटिशियन इन जर्नलिज्म, सो दैट इज द डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर. तो उसमें आपको फिर दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. एक तो ये है कि अपने कोलीग्स के साथ जो है वो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है आपको, एक एक चीज, और जाहिर है आपने मुसलसल स्क्रीन जो है वो फेस करनी है, मुसलसल स्क्रीन पे रहना है, तो आपका एक एक लफ्ज जो है वो काउंट हो रहा होगा, वो सुना जा रहा होगा, और उसको बहुत लिहाज ध्यान से जो है उससे बोलना, तो ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस है. सो द गुड थिंग इज के आई बीन प्रेजिडेंट इन माय यूनिवर्सिटी एज वेल, सो मुझे 4 साल का वहां का जो एक्सपीरियंस है वो काम आ रहा है. तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन जो अमल है इस सारे प्रोसेस में जो मैंने सीखा वो ये है कि खामोशी, यानी जितना आप खामोश रहें, जितना कम बोलें, वो आपको फायदा देता है.
0: सही. अच्छा जैन, ये भी है कि आप माशाल्लाह दो डिफरेंट कंट्रीज में आपने मूव किया है और उनका एक्सपीरियंस भी आपका बहुत डिफरेंट होगा, तो आप जरा इस पे रोशनी डालेंगे कि वहां प्रेशर, अपने कंट्री में प्रेशर होता है या इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और फॉरेन कंट्री में किसी पोजीशन पे खड़े होना कितनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है, कितना बड़ा प्रेशर जो है वो हो जाता है?
1: देखिए मरियम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसमें दो तीन चीजें मैं आपको सबसे मेन चीज बताता हूँ. सबसे पहले ये है कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चीजों में, ठीक है, और डायरेक्टली आप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करें, तो आपको ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है. और पाकिस्तान में रिलेटिवली लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें फिर ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त भी उस कदर नहीं है. यानी आप किसी सियासतदान को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा. आप किसी जो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, जो कोई एसी डीसी है, उस पर उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, वो आपको हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े. इसी तरह से जुडिशरी में आप ये जो है वो तोहीन अदालत लग सकती है. ये जो चीज है, जब आप डायरेक्टली एक मुल्क के अंदर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है. जब आप किसी दूसरे मुल्क में, अब जैसे आपने तारू में बताया, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, इट मीन्स के हमने दो फील्ड्स को देखना है. एक तो ये कि हम लंदन की खबरों को ऑब्वियसली लेंगे, हम यूके के मामलात, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुश्किलात हैं इमिग्रेंट्स की, खासतौर पर पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे. इसके अलावा हम जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल यूके के मसाइल हैं, उन पर भी जो है वो बात करते हैं. तो मामला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेफ आप इसलिए हो जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तानियों के मामलात में उतना जो है वो इंडल्ज नहीं करते खुद को, और ये इतना फिक्रमंद नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आप जब भी यहाँ बैठे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कदरे ज्यादा दलेर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो जो हैं वो पाकिस्तान में हर किस्म की बात, पाकिस्तान के हर मामले पर खुलम खुला बात करें.
0: खुलम खुला. अच्छा,
1: ये चीज़ें पाकिस्तान में
0: एहतियात कर दी चाहिए, एहतियात कर दी. अच्छा, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं एज अ नॉर्मल व्यूअर आप देखते हैं, तो उसमें हर शख्स जो है वो अपनी राय को एज अ न्यूज प्रेजेंट कर रहा है. तो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि आपकी न्यूज वेरीफाइड होनी चाहिए, थ्रू वेरीफाइड चैनल आनी चाहिए, कि हर शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और उसकी व्यूज की खातिर न्यूज जो है वो बनती जा रही है, तो वहां पर फिर जर्नलिस्ट का क्या किरदार है, या आपकी जैसे प्रेस क्लब लंदन है उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
1: देखिए मरियम, दो चीजें हैं।

0: मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जिम्मेदारी आती है, व्यूअर की भी और जो एनालिस्ट है उसकी भी। यानी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, न्यूज बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब न्यूज ये है कि मैं ये कहूं कि जो है वो गली के अंदर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और उसमें दो शख्स जान बाँच हो गए, ठीक, ये तो होगी खबर और ये वेरीफाइबल है। यानी आप मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जो है वो जान से गए, ये सारी चीजों। अब इसमें अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये लोग यहां से आ रहे थे, यहां पर इनको ये मामला आया, ये ज़हनी स्ट्रेस में थे, ये वाली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर बंदा मर गया है तो वो अपने साथ ही लेके चला गया ये कहानी। तो ये जो एनालिसिस हैं, ये जो है ये इसमें क्या सराई भी हो सकती है, इसमें अपने आप से भी एडिशन हो सकती है, लेकिन जो बेसिक न्यूज है, बेसिक न्यूज हमेशा वही रहेगी कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें दो लोग जो हैं वो जान बाँच हुए हैं। सो जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें होती हैं उसमें अब आपकी जिम्मेदारी बतौरे व्यूअर ये बनती है कि आप उसको खुद वेरीफाई करें। और उसमें ये होता है कि आप देखें, अब मामला ये है कि हम ये समझते हैं शायद कि अगर कोई भी शख्स गली में खड़ा होकर वो हमें खबर दे रहा है तो इट मीन्स कि हमने उसको क्या मनोन उस पर यकीन करना है, तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। उसमें ये है कि इतने बड़े बड़े इदारे हैं, अब आप देखें एक खबर बीबीसी दे रहा हो और एक जो है वो गली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे रहा होगा, तो आप किसको बिलीव करेंगे?
1: ऑफ कोर्स
0: आप क्रेडिबिलिटी को यकीन करेंगे। जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो चीज है सबसे मेन चीज। यानी जो बड़े इदारे हैं जिनके हर शहर में नुमाइंदे हैं, हर मुल्क में नुमाइंदे हैं, वो बेसिकली क्रेडिबिलिटी के स्तर पे चल रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सारी मामलात, कोई भी खबर, अब आप एक खबर है फॉर एग्जांपल कराची में, मैं एक खबर देता हूं जी के कराची की एक बस में एक हमला हुआ जिसमें एक शख्स ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। अब ये एक खबर है, ये सिंपली खबर है। अब इसको मैं अगर ट्विस्ट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कराची में एक मुहाजिर ने दो पंजाबियों पे हमला कर दिया। अब ये जो खबर है ये टोटली जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देगी और टोटली जो है वो उसके जो मामलात हैं वो एक लड़ाई की तरफ चले जाएंगे। और अगर लंदन के प्रस्पेक्टिव से देखें तो आप जो है वो नाइजल फराज के ट्वीट पढ़ लें, जिया यूसुफ के ट्वीट पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक खबर को किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। यानी वो जो कोई फिगर होता है, कोई फैक्ट होता है, उसको किस तरह से जो है वो अपनी फेवर में यूज करने के लिए उसको फैब्रिकेट करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें वेरीफाइड जो है वो न्यूज जो हमारे तक पहुंच सके। अच्छा जैन, सोशल मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है। जैसे कि हम प्रीवियस दौर की बात करते हैं, एक दो चैनल्स थे उनसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते थे हम करते हैं। आजकल जो है हर न्यूज हमारे हाथ में है, अपग्रेडेड अपडेटेड हर चीज हमारे हाथ में मौजूद है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जर्नलिज्म के लिए थोड़ा खतरा बन गया है या इसके बेनिफिट्स ज्यादा है?
0: नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजें हैं, इसका फायदा भी ले सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस सेंस में है कि जब आप क्रॉस चेक नहीं करते, एक जर्नलिस्टिक एथिक्स में आता है कि आप कोई भी चीज है तो उसको आप मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। अब देखें, हो सकता है कि आपका जो सोर्स है वो भी तो बाइस्ड हो सकता है। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीटीआई की खबर ले रहे हैं, नून लीग की खबर ले रहे हैं, तो अगर आप पीटीआई की खबर पीटीआई के शख्स से लेंगे तो आपको उसमें वो अपना जो एलिमेंट है उसका, जो उसकी एक बाइसनेस है, वो तो कहीं ना कहीं आएगी, वो आप चाहें या ना चाहें। उसके अलावा अगर आप नून लीग के बंदे से खबर लेंगे तो वो एक बाइसनेस तो आएगी। तो बतौर जर्नलिस्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी, और फिर मल्टीपल सोर्सेस से सेम खबर को आपने कंफर्म करना है। यानी अब एक जलसा होता है लाहौर के ग्राउंड में और वो आप फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी का एक जलसा होता है, तो वो अब जो पीटीआई का शख्स है उसको वो 1,000 का जलसा लगेगा, जो नून लीग का है उसको 2,000 का लगेगा, जो जमात इस्लामी का उसको 1,00,000 की गैदरिंग लगेगी, और जो आजाद सोर्सेज हैं वो शायद आपको कोई एक मुनासिब फिगर 8-10 हजार का बता दें। सो होता ये है कि आपने ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ट्रेनिंग, वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं और जब आप पढ़ते हैं मीडिया को, बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में देखें, मैं भी अकाउंट बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। कोई जो शख्स जिसको मीडिया एथिक्स का नहीं आइडिया, जिसने मीडिया एथिक्स नहीं पढ़ी, वो भी जो है वो बना सकता है। तो होगा ये कि जब मैं और आप वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे मॉरल्स एथिक्स का लिहाज रखेंगे, लेकिन जो शख्स जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो अब जो व्यूअर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि इन तीन लोगों ने जो वीडियो बनाई है, इनमें से मीडिया को कौन जानता है, एथिक्स का कौन क्या लगता है, तो ये अब उस पर जिम्मेदारी बनती है। सो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें जो है अब क्योंकि AI भी आ गया है तो बहुत मुश्किल होगी, खासतौर पे उन लोगों के लिए असल खबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगी है जो इन चीजों से अभी वाकिफ नहीं है, जिनको इस चीज की वाकफियत नहीं है, यानी उनको यही आइडिया नहीं होता कि AI बेस्ड वीडियो कौन सी है और जो नॉर्मल ओरिजिनल वीडियो है वो कौन सी है। तो ये एक व्यूअर और जो खबर देने वाला उन दोनों की बाहमी ट्रेनिंग की मेरे ख्याल में जरूरत है।
1: सही। अच्छा, और जो हमारी यूथ है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है न्यूज से और अपनी रिपोर्टिंग वगैरह जो वो करते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे जैन कि किस तरह वो रिपोर्टिंग करें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? प्रॉपर एजुकेशन लेना कितना जरूरी है, ना कि सिर्फ एक मोबाइल फोन और आप सिर्फ एक न्यूज दे दें, इस पर जरा रोशनी डालें।
0: देखें, अगर एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पे तो क्योंकि किसी किस्म के कोई चेक्स नहीं है प्रॉपर, तो जब आप ये जिंदगी में ये मकसद बनाते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑथेंटिक और जर्नलिज्म में आना है और जर्नलिस्टिक एथिक्स को मलहूजे खातिर रखते हुए, यानी उनको अपने जहन में रखते हुए फिर आपने काम करना है, जब आप कोई बड़ा नाम जर्नलिज्म में बनना चाहें, तो फिर आपको ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा। अब ट्रेनिंग देखें, हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जर्नलिस्ट थे क्या वो ट्रेनिंग लेते थे, उन्होंने भी तो खुद ऐसी चीजें की। होता ये है कि हम बहुत सारे तजुर्बात जो हैं वो खुद जिंदगी में करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम दूसरे के तजुर्बात से सीख सकते हैं। इंस्टेड कि मैं एक गलती जो है वो खुद करूं, तो हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है उसने पहली वो गलती की है और उसने उसको बेहतर करके मुझे दिखा दिया कि ये वाली गलती मत दोहराना। सो द बेटर वे इज मेरे ख्याल में कि जो सीनियर्स हैं आपके, जो सीनियर जिन्होंने पहले काम किया है आपको, मतलब हो सकता है उनकी भी बायसनेस हो, उनके भी बहुत सारे जो है वो अपने मामलात हों, लेकिन आपने 3-4-5 आप मल्टीपल लोगों को देखें जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनको आप बेहतरीन समझते हैं, किसी एक शख्स पर स्ट्रिक्ट ना हो। यानी अगर मुझे किसी एक बंदे का स्टाइल पसंद है और मैं उस पर स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर मेरे अंदर उसका अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह का आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शाहजेब खान ज्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल उनको कॉपी करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर होगा ये कि लोग शाहजेब खान ज्यादा कोई सुनेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि उनके पास एक कॉपी और एक ओरिजिनल मौजूद है।
1: नहीं, तो बिल्कुल आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी एक बात होनी चाहिए, आप अपनी एक राय रख सकते हैं। अल्लाह सुभान व तआला ने हर इंसान को ये तौफीक दी है, ये हिम्मत दी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और माशाल्लाह हम जिन कंट्रीज में हैं वहां पर आप अपनी बात को जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, बट इन अ राइट वे। इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल जस्ट कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: राइट नाउ इन सम ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटेड पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, places close to many of our hearts, Doctors Without Borders is delivering emergency medical care where no one else will. Your donation gives a child surgery, a family clean water, a community a fighting chance against disease. This is an opportunity to make your giving count where it's needed most. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and donate today. Doctors Without Borders, we go there.
3: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
4: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
5: Hey, Gulam.
6: Yeah?
5: Did I return your lawnmower last month?
6: No, bhai, you didn't.
5: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
7: With Randri Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randri Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randri Jewelers, the family name you can trust.
8: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
3: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. जी हाँ, बात हो रही है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब लंदन जो है वो हमारे साथ मौजूद है. जैन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करना चाहूंगी. माशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों का ट्रस्ट लेना, उसके लिए क्या एफर्ट जरूरी है, क्या करनी चाहिए, और एज अ लीडर जो है आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं?
0: मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट के लिए सबसे मेन चीज ये है कि उस शख्स से बात की जाए. अब और दूसरा ये है कि ट्रस्ट जो है वो मेरे ख्याल में बाहमी अमल है, उसमें आप अकेले का किरदार नहीं हो सकता, दूसरे शख्स की एफर्ट भी बहुत जरूरी है. जैसे अब मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ हजरत अली तआला के बारे में कि उनके पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि मेरा एक बाजू कट गया और मेरे पे जुल्म हुआ. अब वो बाजू जाहिर है उसका कटा होता है, वो आता है तो मेरे पे जुल्म हुआ. अब हजरत अली तआला जो है वो फैसला नहीं करते, वो कहते हैं मैं पहले दूसरे शख्स को देखूंगा, हो सकता है तुम उसके दोनों बाजू काट के आए. अब बात यह है कि हम जब एक शख्स की बात सुनकर फाइनल फैसला दे देते हैं तो तब मामला खराब होते हैं. तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो यही है कि जब भी कोई भी आपके पास मामला आए तो जो बंदा आपको कहानी सुना रहा है, जैसे हमने पहले बात की क्रॉस वेरिफिकेशन की, एक तो क्रॉस वेरीफाई करें और दूसरा ये कि आप उस शख्स की कोई बायसनेस हो सकती है. जब वो अपने बारे में कोई भी शख्स बताता है तो वो हमेशा अपने आप को हीरो और दूसरे को विलन पेश करता है. आपने कई जितनी भी कहानी पढ़ी होंगी उसमें बड़ा रेयर होगा कि जो कहानी लिखने वाला है वो खुद को विलन की जगह पे रख रहा हो, वो हमेशा खुद को हीरो की जगह पे रखता है. सो आपको जब आप इस तरह के एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे, कोई भी शख्स किसी के बारे में भी कोई खबर लेके आता है तो मेरे ख्याल में बतौर साफी ये हमारे लिए मजीद आसान है कि कोई भी आपको किसी के बारे में बात बताता है तो आप फौरन फैसला ना करें और फौरन उसके सामने ही उसको फैसला ना सुना दें कि वो तो पहले भी ये और ये. इससे इसके बरक्स मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्ड तब होगा जब टाइम दो तीन दफा आपके साथ कोई इस तरह की बात करेगा जब उसको पता होगा कि आप आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप दूसरे बंदे को भी पैरेलल साथ बिठा लेंगे तो जो नफ्सियात है अगले शख्स की वो भी काम करना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं इस तरह से करूंगा या कोई दरमियान में मामला खराब करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर ये सारी बात आएगी. सो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन जरिया यही है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुने और फिर फैसला करें और जो कोई किसी के बारे में आपको आके कोई भी खबर दे रहा है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें. आप जाहिर है बहुत सारे इमोशंस होते हैं आपके अंदर और बहुत सारे मामलात होते हैं, बाज दफा आपकी किसी के साथ बहुत अच्छे मामलात नहीं चल रहे होते. सो ये यानी फ्लो ऑफ लाइफ है, ये ऐसे ही चलता है कि बाज दफा आपके बहुत अच्छे दोस्त आपके मतलब
1: अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन यह है कि लीडरशिप इसी को कहते हैं कि आपने अगर लीडरशिप करनी है तो आप में ये क्वालिटीज भी होने चाहिए कि आप हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और अच्छे ठंडे दिमाग से जो है वो फैसला कर सके. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये पोजीशन लेना आसान नहीं है और इसकी जिम्मेदारियां भी उससे ज्यादा. अच्छा जैन, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है. मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इस पोजीशन पर हैं तो लंदन में जो मीडिया के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई अहम तब्दीली आपको लाने का मौका मिले तो वो मेन चेंज क्या होगा जो आप करना चाहते हैं?
0: टू बी वेरी फेयर, अगर मुझे कोई शख्स ये जिम्मेदारी दे तो मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे काम करना चाहूंगा। उसके पीछे वजह यह है कि देखिए हम बिकॉज हमने दो जगह को कवर करना होता है, यानी हमने लंदन के मामला को भी देखना है और पाकिस्तान के भी मामला को देखना है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पर है उनकी खबर को देखना है। सो मामला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजर के नहीं आए होते। सो जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ गुजर के नहीं आए होते तो उनको चीजें समझाना, उनको चीजें बताना वो उतना आसान नहीं रहता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मीडिया जो है वो फर्स्ट जॉब नहीं है बहुत सारे लोगों की, यानी जब आप बतौर सहाफी काम करें तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ जो है वो जो आपका लव फॉर मीडिया है या लव फॉर स्क्रीन है उसकी वजह से आप कर रहे होते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने पैरेलल दो चीजें लेके, आप पाकिस्तान में कोई अगर प्रोग्राम होता है तो ही और शी डजंट नीड टू डू एनी अदर वर्क फॉर देयर लिविंग, तो यहाँ पर यह है कि आपको पैरेलल कोई चीजें वो भी करनी पड़ती हैं, यानी आपका जो दाल रोटी है वो कहते हैं ना छान मारे हैं फलसफे सारे दाल रोटी सब पे भारी, तो दाल रोटी जब तक आपने आपकी वो पूरी नहीं होती तो आपको बाकी सारे काम जो है वो पसे पुष्ट आ जाते हैं। तो अब मामला ये है कि यहाँ पर आपने ये चीज कैसे पैरेलल लेके चलनी है कि आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपका जो रोजगार है वो, और जो आपकी ताकत, जो आपका पैशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। इस पर जो ट्रेनिंग्स हैं इसको किस तरह से मतलब पैरेलली दोनों चीजों को लेके चला जा सकता है, इस पर मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है और इस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा, या मेरी ख्वाहिश है कि इस पर काम जो है वो करना चाहिए।
1: जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जैन, एक और बात है कि आजकल माशाल्लाह एआई का जैसे आपने बताया कि दौर है और एआई है, मिस इन्फॉर्मेशन है और ऑनलाइन प्रेशर है, ये तमाम जो चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है आजकल जर्नलिस्ट को, तो एज अ लीडर मैं पूछना चाहूंगी कि जो कम्युनिटी के जो जर्नलिस्ट हैं तो उनके लिए, उनको इन चैलेंजेस के लिए आप किस तरह तैयार करना चाहेंगे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
0: देखिए मेरा ख्याल ये है कि आप अपने जो आपका जहन है, एक एक अगर आप पीछे देखें तो थ्रू आउट जितने भी लोग हैं वो बगैर एआई के, बगैर चैट जीपीटी के उन्होंने जिंदगी गुजारी है और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, बड़ी बेहतरीन
1: जी।
0: तो मामला जो है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप एआई से, अगर मैं भी एआई से पूछ रहा हूँ, आप भी एआई से पूछ रही हैं, जो चार साफी और हैं वो भी एआई से पूछ रहे हैं, तो ओरिजिनैलिटी मर जाएगी, यानी एक ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए हर शख्स की। एक जो है वो खुदा ताला ने ये एक सलाहियत दी है हर शख्स के अंदर, एक खूबी रखी है कि वो दूसरे से डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दूसरे से डिफरेंट है। और हर, अब यही प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर चार पांच छह और साफी होंगे वो कंडक्ट करते हैं, या मैं अपना प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, हर शख्स का अपना एक अंदाज है, अपना जो है वो तर्ज है चीजें करने का। सो जब आप सारे एक चीज पे रिलाय करेंगे तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मिक्स एंड मैच होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक ही तर्ज की चीजें जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी ये नया है और जो है वो लोग उसको उस तरह से, बहुत सारे लोग उस तरह से नहीं जानते, कुछ बेहतर जानते हैं, कुछ कम जानते हैं। तो अगर इसी तरह से रहा और सारी की सारी चीजें जो है हमने एआई पे डाल दी, तो मेरे ख्याल में ओरिजिनैलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो अगर खत्म हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में जो एक खूबसूरती है, यानी एक आठ घंटे की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मर्जी से एक एक जो घंटे की स्लॉट है उसको पसंद कर रहा होता है, कोई जो है वो मॉर्निंग को, मॉर्निंग टाइम के शो को, कोई जो है वो इवनिंग टाइम के शो को, कोई जो है वो मिड डे के शो को। सो होगा ये कि अगर उसको एक ही तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सबकी ओरिजिनैलिटी इफेक्ट होगी। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इस ओरिजिनैलिटी को कायम रखना है, अगर हमने अपने आप को, अपनी जात को कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें फिर अपने आप पे भी रिलाय करना पड़ेगा। और एक चीज जो बड़ी बेसिक हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि एआई को हमने बनाया है, हमें एआई ने नहीं बनाया। सो इतना हमने उस पर रिलाय नहीं करना कि वो ही हमें जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड करे। हम कोई भी चीज, अब होता ये है कि हमने किसी से टेक्स्ट मैसेज भी करना तो वो भी हम उसको बोल के बता रहे होते हैं कि ये भेज दो मुझे, ये इसकी बर्थडे आ गई, तो ये तो आपके अपने इमोशंस कहाँ हैं? यही को तो नहीं पता कि आपका किसी अपने बहन भाई से किस कदर मोहब्बत का रिश्ता है, क्या मामला है उसका, उसके साथ। तो वो तो आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी में या बड़ी अच्छी उर्दू में, क्लीश उर्दू में लिख के तो दे देगा, लेकिन मामला ये है कि जो आपके अपने जज्बात हैं, जो आपने उनके साथ बचपन गुजारा है, जो आपने उनके साथ मुश्किल गुजारी हैं, जो आपने उनके साथ टेंशन शेयर किए हैं, वो एआई ने तो नहीं की। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है, जरूरत के टाइम आप जरूर यूज करें और ऑब्वियसली यूज करनी चाहिए, लेकिन उसको इतना हम अपनी डेली लाइफ में ना ले आए कि हमें जो है वो सलाम का जवाब देने के लिए भी जो है वो एआई की जरूरत पड़े और सलाम मीडिया पर अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए एआई हमें
1: जरूरत पड़े। ये बहुत बेहतरीन है कि अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस जो हैं वो आप जरूर उनको खत्म मत कीजिए। आप हम जिस दौर से आए हैं या जिस जहां हमने क्वालिफिकेशन हमारी है जहां की, वहां पर मकसद हमारा यही था कि हम अपनी एबिलिटीज को लेकर आए, अपने स्किल्स को जो है वो काम में लाए, ना कि ये कि हम हर चीज जो है वो टूल्स पे जो है वो रिलाई करना शुरू कर दें। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है जैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिये आप एक कामयाब माशाल्लाह सहाफी भी हैं, कामयाब एक लीडर भी हैं, एक तो ये कि आप हमारी जो है अवाम है जो नए लोग हैं उनको किस तरह से कोई मैसेज आप देना चाहें, उनको किस तरह से आप इस फील्ड के लिए पॉजिटिव वे में ला सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के बारे में यही कहा जाता है कि जब भी रिपोर्टिंग की जाती है एक जिम्मेदार सहाफी की जिम्मेदारी डेफिनेटली ये है कि अगर वो रिपोर्टिंग करे या बात करे तो कम अज कम उसका कोई एक डिग्निटी को मेनटेन रखे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव व्यूज तो इससे चाहे वो कोई कम्युनिटी अफेक्ट हो चाहे कोई कंट्री अफेक्ट हो, दे डोंट केयर। तो इस चीज का जरूर ख्याल जो है वो कैसे रख सकते हैं और नई जनरेशन जो है वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कामयाब और जिम्मेदार सहाफत कैसी होनी चाहिए?
0: देखें मरियम, टू बी वेरी फेयर मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है या एक मिथ है या एक गलत बात जो पोर्ट्रे की जाती है वो ये की जाती है कि हम कहते हैं कि जो सच्चा शख्स होता है वो कड़वा होता है। तो मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आपको सच्चा होने के लिए कड़वा होने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप अपने रिश्ते बचाएं, अपने रिश्ते मजीद बनाएं, और जो एक एक फ्रेज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके अहलो अयाल हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आप उनमें पसंदीदा नहीं है तो आप दूसरे लोगों के लिए जितने भी पसंदीदा हों उसका आपको फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी आपके पीआर है, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखें और उनको खुश रखें। तो आपने अगर कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर कोई खबर देनी है तो आप उसको रिलैक्स मोड में भी दे सकते हैं, आप उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में भी, सॉफ्ट स्किल्स यूज करते हुए भी दे सकते हैं, और वही चीज जो है वो आप थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल के आप बहुत सारे लोगों के दरमियान नफरत की वजह बन सकते हैं।
1: Exactly.
0: तो आपकी खबर, आपका कंटेंट वो हमेशा मोहब्बत का बायस बनना चाहिए, नफरत करें।
1: बिल्कुल, ताकि मीडिया जो है जो फील है उसको लोग पॉजिटिव वे में देखें, उसके बारे में लोग ये नेगेटिव कमेंट्स ना दें या नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में ना आए कि मीडिया तो हमेशा हमें डिप्रेशन ही देता है, टेंशन ही देता है, यहाँ खबरें ऐसी आती हैं। जब आप खबरें दें, आप न्यूज करें, तो आप उसके साथ उसका सोल्यूशन भी जो जरूर दें और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो तमाम दुनिया को दें। बहुत शुक्रिया जैन आपकी इस खूबसूरत और जबरदस्त डिस्कशन का, और उम्मीद है हमारी बहुत सारी वेल विशेज आपके साथ हैं और अल्लाह सुभान व तआला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे और आप इसी तरह चमकते और जगमगाते रहें। जज़ाकअल्लाह।
6: We work hard to build our homes, businesses and futures. Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
9: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness. And every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freezer card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031 208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
10: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
11: When you give water, you bring life to drought-affected communities, providing fresh water for drinking, cleaning, and growing. Your support helps Islamic Relief implement water, sanitation, and hygiene projects, providing clean water to communities around the world. Donate now to Islamic Relief.
12: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
1: Welcome back. It's mid-morning talk with Maryam Hashmi aur hamare saath hamari studio guest maujood hain Dr. Fahmida Qudus Rabbani aur mashallah unke bare mein main aapko kya batati chalun ki PhD hain aur Wits University se inhone apni taleem hasil ki hai aur bahut sare challenges ka inhone bhi samna kiya hai to inse poochte hain aaj ke jo log is field mein hain ya jo log study kar rahe hain aur research ke jo process se guzar rahe hain unke liye jo difficulties aati hain usme I hope कि ये हमें कोई एक अच्छी एडवाइस दे सके टिप बता सके और वो तमाम जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आज के प्रोग्राम में आसानी हो जी वेलकम करते हैं हम डॉक्टर फहमीदा को अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहमीदा
13: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसी हैं मिस मरियम
1: मैं बिल्कुल ठीक फहमीदा बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए आपने अपना वक्त निकाला फहमीदा सीधी आपसे बात करूंगी माशाल्लाह मैं ये चाहूंगी आप जरा क्विकली अपना इंट्रोडक्शन अपने हमारे लोगों को दें कि किस सब्जेक्ट में आपने किया ताकि लोगों को आसानी हो कि अगर कोई इस फील्ड से रिलेटेड है तो वो क्या करे नेक्स्ट
13: अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगी क्योंकि डायरेक्टली मैं जंप नहीं करूंगी पीएचडी पे
1: जी
13: एंड मैं बताती चलूं कि मैंने पाकिस्तान से अपना मास्टर्स किया था ज्योग्राफी में एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एमएस किया एनवायरमेंटल स्टडीज में एंड नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी से और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पीएचडी का तो पीएचडी में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेंस आ गई विट्स यूनिवर्सिटी से और मैंने फिर दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल स्टडीज को चूज किया और मुश्किल सफर था मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था बट ये कि आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखानी पड़ती है आपको थोड़ा सा डट के रहना पड़ता है अगर आपको शौक है और साथ में सपोर्टिव आपकी फैमिली भी हो तो उसको चार चांद लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो मैं फिर यही कहूंगी और साथ ही मैंने अपना यहाँ पे साउथ अफ्रीका में टीचिंग से स्टार्ट किया सो मैं टीचर थी और कभी भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट को अपनी डेस्टिनेशन नहीं समझना चाहिए
1: और आपकी मेंटोर मैं थी
13: और आपने मेरी बहुत हेल्प की है आपने मुझे थामे रखा आपने मुझे बस अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आप एक फरिश्ते की तरह सामने आई हर इस पे और आपने मुझे थामे रखा और शायद हो सकता है कि आप मैं अब ये नहीं कहूंगी कि आप ना होती तो क्या होता मैं ये कह रही हूँ कि आपके होने से जो मुझे फायदा हुआ और कुछ लोगों को वो प्रिविलेज नहीं मिलता है तो शायद इस वजह से तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी कहूंगी कि जहां तक हो सकता है अगर आपको आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें आपके किसी का हाथ पकड़ने से हो सकता है वो बंदा कहाँ तक पहुंच जाए
1: बेहतरीन और आज आप इस मकाम पर हैं तो आप क्या आप सोच नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर और ये इसमें आपकी बहुत ज्यादा कोशिश शामिल है कि माशाल्लाह आप गिव अप नहीं करती और ये आपकी सबसे बड़ी खसूसियत है कि आपने माशाल्लाह अपने इस सफर को एंड तक आप पीएचडी तक लेकर गई हैं जी टॉपिक पे आते हैं फहमीदा सिंपल सी बात है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपने अपना रिसर्च टॉपिक चूज करना क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि जो इनका रिसर्च टॉपिक है वो सही है उसका सही जो है इस्तेमाल होगा या वो तहकीक के रिसर्च के काबिल भी है कि नहीं तो उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे
13: एक्चुअली सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है.
1: बेहतरीन.
13: आप जो है अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे ये चीज करनी है, अगर आपको माइग्रेंट्स पे रिसर्च करनी है, एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए जो कोई पढ़ना चाहता है, और उसको फिर क्या करना चाहिए कि माइग्रेंट्स के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े. अच्छा रिसर्चर कौन होता है? जो अच्छा रीडर होता है. तो मैं यही आपको कहूंगी कि आप उसके बारे में इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, और क्योंकि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली आपकी दिलचस्पी उसमें होगी. और आप दिलचस्पी से जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि अच्छा इन एरियाज पे इतना ज्यादा काम हो चुका है कि आपके काम करने की वहां जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है उसके बाद इतना वो सैचुरेशन पॉइंट आपका आ जाएगा पढ़ पढ़ के कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज इतने लोगों ने कर ली और अभी स्टिल इस चीज पे काम करना बाकी है. ये कहां से आपको पता चलेगा? जब तक आप किसी का काम पढ़ेंगे नहीं. तो आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से उस मकाम तक पहुंचे कि आप वो पॉइंट्स लिखते जाएं. अच्छा मैं सोच रहा था इस चीज पे काम नहीं हुआ, अचानक से आपके सामने वो चीज आ जाएगी, नहीं उस पर भी हो चुका है. फिर आप सोचे शायद इस तरीके से नहीं हुआ, फिर वो चीज आपके सामने आ जाएगी. अच्छा नेक्स्ट चीज आप क्या सोचे, आप कहें अच्छा ये मेथड फलां काम जो है किसी ने क्वांटिटेटिव किया है, मैं क्वालिटेटिव कर लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. अच्छा ठीक है वो चीज आपके सामने आ जाती है, अच्छा ये चीज किसी ने नहीं की. नेक्स्ट आप क्या करें, ये चीज साउथ अफ्रीका में हुई है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई, ये यूके में हुई है कैनेडा में नहीं हुई. आप फिर ये ज्योग्राफिकल पॉइंट देखना स्टार्ट कर दें और आप हर तरीके से उसको खंगाल के देखें उस टॉपिक को, किस चीज के बारे में या किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज नहीं हुई है. फिर जाके आप अपने पॉइंट्स लिखते जाएं, तब जाके आपको आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप कह सकें अच्छा मैं जो रिसर्च करने जा रही हूँ ये एक न्यू कंट्रीब्यूशन होगी, मैं एक न्यू नॉलेज क्रिएट करने जा रही हूँ, न्यू नॉलेज में एक एक मतलब कुछ एडेड होगा मेरी तरफ से. तो वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करें रीडिंग से, जितनी रिसर्च करेंगे जितना पढ़ेंगे वही आपको हेल्पफुल होगा कि आप अच्छे से अपना टॉपिक चूज करें.
1: कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए लिटरेचर रिव्यू करना और उसको टाइप करना उसको कि जितना आपने पढ़ा होगा आप उसको वो करें. और बड़ी खूबसूरत फहमीदा ने बात की है कि समटाइम हम स्कोप के पीछे बहुत भागते हैं कि इसका स्कोप ज्यादा है इसमें ही हम काम करें, जबकि उसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होता है. लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को देखें और अपने इंटरेस्ट में चाहे उसमें कोई स्कोप नहीं है लेकिन आप वो जरिया है जो कि उसको जो है बढ़ा सकते हैं और उसको आगे लेकर चल सकते हैं और उसका स्कोप जो है दूसरों के लिए आप जो है वो बना सकते हैं. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन था कि किस तरह से आप रिसर्च की जाए, अपना लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया जाए. अच्छा अब हम आगे आते हैं, रिसर्च गैप भी होता है बहुत ज्यादा, वो भी इस फील्ड से रिलेटेड है. फहमीदा उसके बारे में जरा बताइए कि वो कितना जरूरी है और वो क्या.
13: अच्छा जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं अच्छा क्वालिटेटिव हुआ है तो क्वांटिटेटिव नहीं हुआ, आप देखते हैं कि अच्छा किसी ने रूरल एरिया में किया अर्बन में नहीं किया, आपकी इंटरेस्ट है, आप ही अपनी चीज पढ़ते जा रहे हैं, आप वो पॉइंट्स लिखते जाइए. आप हर चीज के बारे में, और जैसा कि आपने अभी कहा कि लिटरेचर रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो, आपको समटाइम इतनी चीजें रेजोनेट करती हैं कि आपको दिमाग में याद हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा फलां ने क्या कहा था रूरल एरिया अर्बन एरिया के बारे में, फलां ने जो है वो पेरिफेरल एरियाज और इनर सिटी के बारे में बात की, फलां ने फलां कंट्री और फलां कंट्री का कंपैरिजन दिया. इससे आपके अंदर खुद ही एक जुस्तजू आती जाएगी, खुद ही एक इंटरेस्ट, वो आपका जो टॉपिक था उसको एक शक्ल मिलती जाएगी.
1: बिल्कुल.
13: और आपको पता चलता जाएगा ये चीज जो मैं करना चाह रही हूँ ये वाकई किसी ने नहीं की और मेरी चीज जो है इस लिहाज से डिफरेंट होगी. तो आपको फिर वही पॉइंट के रीडिंग से ही आपको पता चलेगा, जब आप रीडिंग से पॉइंट्स बना के रखेंगे कि अच्छा इस चीज पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना काम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे गैप आ गया. अच्छा मैं आपको माइग्रेंट्स की मिसाल देती हूँ, तो माइग्रेंट्स पे बहुत काम हो चुका है कि माइग्रेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, माइग्रेंट्स को के बारे में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तो माइग्रेंट्स के बारे में मतलब जब वो ट्रेवल करके आते हैं तो किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन्हें, माइग्रेंट्स को हॉस्पिटल में किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है. और फिर सडनली आप फोकस करते हो किसी ने ये चीज नोट नहीं की है कि वो हेल्थ को एक्सेस कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं. आप पॉइंट्स खुद ही आपके जहन में आते जाएंगे. आप सोचोगे कि अच्छा वो हॉस्पिटल तो मौजूद है, माइग्रेंट्स भी मौजूद हैं, सर्विसेज मौजूद हैं, फिर भी क्यों माइग्रेंट्स शिकायत कर रहे हैं या फिर भी क्यों शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन मतलब क्यों विजिबल है कि उनको कुछ सहूलियात मयसर नहीं है. तो आप उस चीज के पीछे दौड़ते हो, अच्छा किसी ने ये रिसर्च क्यों नहीं की, किसी ने ये क्यों नहीं मालूम करना चाहा कि ये सहूलत होने के बावजूद उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं या सहूलत उन तक क्यों नहीं پہنچ پا رہے. یہاں سے آپ آہستہ آہستہ آہستہ آپ کا گیپ جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے میں اس چیز پہ اب کام کروں گا کہ سہولت موجود ہے, میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں, مائگرنٹس اویل کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں اویل کر پا رہے. یہ دیکھیں گیپ میں نے یہاں پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے بتا دیا.
1: بالکل ہاں, اس ریسرچ گیپ کے ساتھ آپ اپنے جو ہے آگے جو ہے اپنے ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات بڑی ہے امپورٹنٹ, کہ بہت سارے بچے بہت اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اپنے اکیڈمک جنرل پہ دھیان نہیں دیتے یا ان کی پبلیکیشنز نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول پر یہ پبلیکیشنز کتنی امپورٹنٹ ہے؟
13: اچھا پبلیکیشنز تو میں تو کہتی ہوں جیسے خاتون کے لیے زیور امپورٹنٹ ہوگا, ریسرچر کے لیے پبلیکیشن امپورٹنٹ ہے. آپ جتنا مرضی کچھ کیے جا رہے ہیں, آپ ریسرچ فیلوشپس لے رہے ہیں, آپ گرانٹس ون کر رہے ہیں, آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے, آپ نے کتنا کچھ کر لیا, لیکن وہ ریسرچ جب جب پڑھنے والے کی طرف پہنچی نہیں ہے, وہ ریسرچ جب ایک بک شیلف میں جا کے تھیسس بن کے پڑھی ہوئی ہے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ایک فائدہ ہے, ٹھیک ہے آپ کو آپ نے ریسرچ کی, آپ نے اتنا ایک نالج میں کنٹریبیوشن, لیکن وہ نالج کسی پڑھنے والے کی طرف پہنچی نہیں ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ پالیسی میکرز کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیا تجویز کیا, کیسے پتا چلے گا کسی اور ریڈر کو کہ او یہ اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے اور میں کسی اور چیز کے بارے میں کروں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے پبلیکیشنز پہ بہت زور دینا ہے. آپ نے پبلیکیشنز اس طرح کیجئے کہ جیسے آپ کا تھیسز ہے, آپ کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, تو زیادہ تر ماسٹر اسٹوڈینٹس کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تھیسز کو یا اپنے چیپٹرز کو پبلش کروا سکتے ہیں. اور تھیسز یا ماسٹرز جو ہے وہ ایک بک کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, آپ ان کو چیپٹرز کی شکل میں بھی پبلش کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ ہے آرٹیکل پبلیکیشن, جو کہ وہ آپ کا آپ لکھتے ہو سب سے پہلے وہ پیپر ہوتا ہے اور جب وہ پبلش ہو جاتا ہے تو وہ آرٹیکل بن جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ بھی کرنا لازمی تھا. اور یہ ہے کہ آپ کو ٹرم کرنے کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس چیپٹر میں یہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ میرے آرگیومنٹس ایسے تھے جو میں نے کہیں اور نہیں پڑھے, یہ صرف میرے ہیں, یہ میں نے چیز انٹروڈیوس کرائی, یہ میں نے چیز جو ہے یہ میں نے اپنے ریڈرس کو بتائی. آپ وہ پوائنٹس لے کے آپ اپنے آرگیومنٹس پہ ایک جو ہے مین آئیڈیا آپ کا ہوگا, اس کے اوپر اپنا آپ اپنا آرٹیکل جو ہے وہ بنتے جائیں. لائک یہ تو بہترین ورڈ ہوگا کہنے کے لیے. اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد دیکھیں کہ وہ ایک آرگیومنٹ کے آس پاس ساری ڈسکشن جا رہی ہے آپ کی, آپ کا لٹریچر ریویو بھی اسی پوائنٹ کو بات کرے, آپ کا میتھڈز بھی اسی پوائنٹ کی بات کرے, آپ کا فائنڈنگز obviously اسی پوائنٹ کی بات کریں, اور پھر آپ اس کو اچھے سے اسی پوائنٹ کو کنکلوڈ کرو. اور یہ بہت مطلب مختصر ہوتا ہے, آپ کو 15-16 پیجز ہارڈلی چاہیے ہوتے ہیں, اس میکسیمم جو ہے وہ جا سکتا ہے سم ٹائم یہ 19 پیجز تک, اور اگر ورڈز کی بات کی جائے تو منیمم 6000 سے لے کے 8000 اور 9 میکسیمم تک جا سکتا ہے انکلوڈنگ ریفرنسز. سو آپ کو اس چیز کا دھیان کرنا ہوگا کہ آپ کو بہت بہترین قسم کے اپنے آرگیومنٹس کو چوز کر کے ہی اپنے آرٹیکل کو پیپر کو آرٹیکل کی شکل دینی ہے.
1: زبردست, دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ان کے لیے, اسٹوڈینٹس کے لیے, کہ اس پروگرام میں آپ کو سارے ٹاپک جو ہے وہ کور ہو گیا, اور کتنی آسانی. اور سب سے بڑی بات فہمیدہ کی یہ کہ ماشاء اللہ یہ بڑی پازیٹیو رہتی ہیں, اور پازیٹیو وے میں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے. سب کچھ لوگوں کو پڑھائی بالکل پسند نہیں ہوتی کہ کس طرح پڑھا جائے, لیکن جب آپ انٹرسٹ کا ٹاپک ہوتا ہے نا تو آپ اس کو جو ہے مور ایکسپلور کرتے جاتے ہیں. اسی طرح ہم بھی آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ہماری ڈسکشن ان کے ساتھ جاری رہے گی. وقت جو ہے وہ ویسے بھی بہت کم رہ گیا ہے, تو بہت ہم زیادہ کوئسچنز ان سے کر نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. سو اسٹے ٹیونڈ آن سلام میڈیا.
14: The following is a paid political advertisement by the Al Jamaa Political Party.
15: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al Jamaa effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al Jamaa aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure, regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al Jamaa effect. South Africa's alternative political party, the Al Jamaa effect.
14: That was a paid political advertisement by the Al Jamaa political party.
16: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
17: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
18: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
19: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
20: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी और बात हो रही है इस वक्त के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से किया जा सकता है बेहतरीन रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं और आपके लिए जो भी डिफिकल्टीज हैं तो वो उसमें ये है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आपके जो स्किल्स जो है वो उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है खवातीन के लिहाज से मैं फहमीदा से पूछना चाहूंगी कि फहमीदा खासतौर पर जो खवातीन और जो घरेलू खवातीन है जो कि अपनी आला तालीम के लिए तहकीक के लिए खानदान के लिए या दीगर जिम्मेदारियों में तवाजुन बैलेंस कायम करने के लिए जो है ना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उन पर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो उन जिम्मेदारियों में सोचती हैं कि मैनेज नहीं कर सकती आप उनको क्या मशवरा देंगे और वो किस तरह से इस चीज को बैलेंस करके मैनेज कर सकती हैं
13: अच्छा आपने कहा कि अगर उनका दिल है पढ़ने का अगर उनको उनके अंदर वो चिंगारी मौजूद है ठीक है अगर वो पढ़ना चाहती हैं सबसे पहली बात यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो करना चाहती हैं अच्छा मैं भी हाउसवाइफ थी जब मैंने स्टार्ट किया टीचिंग से पहले जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अपने मास्टर्स को मैंने कैसे स्टार्ट किया तो मैं हाउसवाइफ थी मुझे एक शौक था कि मैंने आगे पढ़ना है मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना है और जैसे ही मुझे वो मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो वो एकदम से नहीं मिला था उससे पहले मैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही थी कहीं पे सुपरवाइजर मौजूद नहीं है कहीं पे मैं लेट हो गई हूँ कहीं पे रिसर्च टॉपिक जो है वो अलाइन नहीं कर रहा सुपरवाइजर से کہیں پہ کیا مسئلہ, اور کبھی اسٹڈی ویزا نہیں آ رہا, تو کافی ڈاکومنٹیشن کے ایشوز بھی تھے. لیکن وہ چنگاری جو تھی نا, وہ آپ کے اندر اگر موجود ہے تو آپ ڈٹے رہیں گے, آپ وہ دکھائیں گے پرسیویرنس کہ اچھا نہیں آپ کر سکتے ہیں.
1: لیکن فہمیدہ آپ پہ بھی تو بہت ذمہ داریاں تھیں نا, آپ نے ان کو کیسے مینج کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے, اگر آپ یہ مینج کر لیں تو آپ سے سب مینج ہو جائے گا؟
13: اچھا میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ڈسپلن ہونا پڑے گا,
1: رائٹ,
13: آپ کو دکھانا پڑے گا کہ واقعی آپ یہ کرتے ہیں, اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم ڈیووٹ کرنا پڑے گا اپنی اسٹڈیز کو. اگر آپ میں وہ چنگاری وہ ایک چیز موجود ہے تو آپ نے اس کو راک نہیں بننے دینا, آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے, اچھا میں یہ چیز بھی کہوں گی, کچھ لوگ کہتے ہیں موٹیویشن, اگر میں کسی کو بھی موٹیویشن دیتی ہوں تو موٹیویشن میں تھوڑی سی ہوا دے دوں گی چنگاری کو کہ وہ چلتی رہے, وہ راک نہ بنے. آپ کا کام ہے اس کو واپس جو ہے وہ اس کو جلائے رکھنا, آپ نے اس کو ایک جس شکل میں دینا چاہتی ہیں اس اپنی موٹیویشن کو یا اپنی اس خواہش کو آپ نے جلائے رکھنا ہے, اور آپ نے ڈسپلنڈ ہو کے دکھانا ہے. کیونکہ اگر بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, مسلمز بھی ہیں, دوسری کمیونٹی سے بھی ہوں گے, لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری پانچ نمازیں کیوں ہم پہ فرض کی گئی ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا ڈسپلن ملانے کے لیے.
1: بالکل,
13: کہ ایک تھوڑا سا, اور کہتے ہیں ابھی نئی ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دماغ کا کچھ ایک پورشن ایسا ہے کہ جب آپ ڈسپلن, آپ کا دل نہیں بھی کر رہا آپ اٹھ رہے ہو, آپ کا دل نہیں بھی کر رہا آپ کو وضو کرنا ہے, آپ کو چھوڑ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے یا میں نے پڑھنی ہے ابھی, تو وہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ آہستہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, پھر آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایک بوجھ فیل کر رہے ہو کسی چیز. اسٹڈیز کا, میں اسٹڈیز کی بات کر رہی ہوں, آپ خود بہت وہ چیز کرو گے, آپ اپنے کام جلدی سے گھر کے کر لو گے, آپ سوچو گے اچھا اس ٹائم پہ میرا بچہ سو جاتا ہے, اس ٹائم پہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں, تو میں نے یہ گھنٹہ جو ہے یا میں نے یہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے 30 منٹ میں نے اپنی اسٹڈیز کے لیے ڈیووٹ کرنے ہیں. تو جب آپ وہ کر کے دکھائیں گی نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود ہی آسان کرتا رہے گا. آپ نے اللہ کو دکھانا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے, یقین رکھنا ہے, یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا. لیکن ڈیووشن دکھائیں, تھوڑی محنت کریں, اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا ہے, لیکن ڈسپلن ہونا بہت ضروری
1: ہے. اور کتنی خوبصورت بات کہ دین اسلام نے ہمیں یہ سب سکھا دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے اگر مائنڈ میں ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہی کرنا ہے. یہ بڑی خوبصورت ایگزامپل جو ہے فہمیدہ آپ نے دی ہے. فہمیدہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ایک اور, کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ایک یہ بھی جو ہے دماغ میں آتی ہے چیز کہ خواتین فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتی یا فیل نہیں کرتی اپنے آپ کو, ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن اسٹارٹ کی اپنی تو اس کا بینیفٹ ہم زیادہ برڈن اپنی فیملی پہ ڈال دیں گے. اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے اگر کوئی اپرچونیٹیز ہیں تو وہ کیا ہے؟
13: اچھا میں اس کے لیے یہ کہوں گی, کچھ چیزیں جو مجھے بھی پہلے علم نہیں تھی, میں بھی یہ سوچتی تھی کہ اچھا یہ اتنا خرچ کرنے کے بعد ہی میں ڈگری کی طرف جا سکتی ہوں اور اتنا پے کروں گی تو میں رجسٹرڈ ہو کے کچھ کر سکتی ہوں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بہت سی اپرچونیٹیز ایسی ہیں, بہت سے گرانٹس ایسے ہیں, بہت سی اسکالرشپس ایسی ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو علم ہے, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو آپ ریسرچ کریں, پڑھنا, ریسرچ کرنا, گوگل پہ سرچ کریں. آپ سب سے پہلے یونیورسٹیز کے بارے میں جانیں, آپ کے آس پاس کتنی یونیورسٹیز ہیں, کن کن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. سم ٹائم آپ کے آس پاس اتنا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہوتا. آپ سب سے پہلے یہ معلوم کریں ہے کیا کچھ آپ کے آس پاس جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیا سارا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہاں پہ ان سے اپروچ کرنا ہے اور پتا کرنا ہے کہ کیا ان کے پاس اسکالرشپ موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو سوچ رہے ہو کہ آپ کو اتنا پے کر کے کرنا پڑے گا, وہاں پہ ان کے پاس اسکالرشپ موجود اور آپ کا ایم ایس یا پی ایچ ڈی آرام سے ہو جائے. تو آپ نے ان سے پتا کرنا ہے اور آپ نے ان کو یہ بتا کے رکھنا ہے, کیونکہ ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی یہ کوئی بھی تعلیم, کوئی بھی ڈگری عام ڈگری نہیں ہے. جو بھی آپ نے میٹرک سے لے کے جہاں جہاں تک آپ پہنچ رہے ہو, ہر اچیومنٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ اس کو وہ قابل تعریف ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جہاں پہ آ کے ریسرچ سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر اپروچ کرتے ہو تو یونیورسٹی سم ٹائم خود ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس ملے اور ہم ان کو اسکالرشپس دیں, برسریز دیں. تو آپ ہو سکتا ہے آپ ان لکی اسٹوڈنٹس میں ہو جاؤ, اگر ایک یونیورسٹی سے نہیں ملا آپ دوسری سے اپروچ کریں. تو مجھے یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اسکالرشپ ملے گا, برسری ملے گا, ملے گی اور اپنی ایم ایس سی پی ایچ ڈی کو اپنی ہی پسندیدہ انٹرسٹ کے اس ڈائریکشن میں لے کے جا کے ڈگری لے سکتے ہو, لیکن آپ کو اس سلسلے میں محنت کرنی ہوگی, آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی, آپ کو ڈھونڈنا ہوگا, یہ ورک آؤٹ آپ کو کرنا پڑے گا.
1: زبردست فہمیدہ, بالکل محنت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محنت کا صلہ جو ہے وہ آپ کو ضرور دیتے ہیں. فہمیدہ, ڈاکٹر فہمیدہ سوری ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور فہمیدہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت اور زبردست ڈسکشن کا اور اتنی انفارمیشن کا, اور آئی ہوپ کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے یہ رہنمائی جو ہے اس کا ذریعہ بنی ہوں گی. بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا.
13: جی ناظرین, آپ کا بھی جی, آپ نے مجھے بلایا, تھینک یو سو مچ فار اپرچونٹی آلسو. اور مجھے 6 سال پہلے کی ساری یادیں تازہ ہو گئی جب میں ٹیچر سے ڈیپوٹی بنی تھی اور آپ نے مجھے بلایا تھا, اور الحمد للہ آج آپ نے مجھے بلایا اور ایک ڈفرینٹ سیم جگہ پہ ڈفرینٹ کانٹیکٹس میں ملے, الحمد للہ.
1: بہت شکریہ فہمیدہ آپ کی اس یاد کا, آپ کے اس ساتھ کا.

0: दूसरे की मदद के लिए बहुत ज्यादा हमें जो है दौलत चाहिए, वसाइल चाहिए, या कुछ इस तरह की हमें फाइनेंशियल जरूरियात जो है वो होनी चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए. लेकिन हकीकत यह है कि एक छोटी सी कोशिश, एक नर्म लव्स, एक बरवक्त ताउन और एक नेक कदम भी किसी की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है. तो ये हमारी जो कोशिश है ना, ये हमें एज ए इंडिविजुअल करते रहना चाहिए ताकि हम दूसरों की जो मदद है वो हम कर सकें और जिंदगी जो है वो आसान लोगों की बना सकें. आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है और इसके लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त जो है वो गेस्ट मौजूद है. उस गेस्ट के तारुफ में मैं जो हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ऐसे नेक काम दुनिया के लिए कर रही हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों के लिए कर रही हैं. बहुत बाहिम्मत है और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत फ्रेंडली है, दोस्त खातून है जो कि बहुत जरूरतमंदों की मदद के लिए हर टाइम जो है वो कोशिशें रहती हैं कि किसी को किसी चीज की किसी हेल्प की जरूरत हो. न सिर्फ वो कम्युनिटी को कंबाइन करती हैं, कम्युनिटी को जोड़ती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि दूसरे लोगों में भी एक मैसेज जो है वो उनकी तरफ से जाए और इस मैसेज को वो दुनिया में फैलाना चाहती हैं. तो ये एक छोटा सा, जैसे हमने कल बात की थी, एक छोटा सा दिया है जो आप जलाते चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि आप उस दिए में, दिए की जो रोशनी है वो आप बिखेरते चले जाते हैं. तो हमारी मौजूद मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है राह खिदमत और इसका आगाज किया, क्या सोच उनको आई और किस तरह, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे. जाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, कभी फाइनेंशियली आती हैं, कभी आपको पर्सनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इन तमाम चैलेंजेस से निकल कर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना सकते हैं, आप दूसरों के लिए मदद का जरिया बन सकते हैं. तो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्रा भट्टी. और सिद्रा भट्टी से मैं बात करना चाहूंगी कि सिद्रा भट्टी को हम वेलकम करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कैसी हैं सिद्रा आप? बिल्कुल ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह. बल्कि मैं कहना चाहूंगी देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: करती हूँ कि आप ठीक होंगे. रब्बे कायनात से दुआ है कि आप सबको अपने जमान में रखे, खुश व खुर्रम आबाद रखे.
0: बहुत शुक्रिया माशाल्लाह. ये आपकी जो है क्या कहते हैं, दिल को छू लेने वाली जो आवाज है, जो आपका अंदाज है, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है खुशी का बाइस है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम सुनते हैं आपकी आवाज. तो बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सिद्रा मैं बात करी थी कि देखिये ये बड़ा ईजी है. बहुत सारे लोग हैं जो नरम दिल रखते हैं, नरम जज्बा रखते हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कभी वसाइल, कभी आपको सपोर्ट और कभी कोई ऐसी मुश्किलात जो है वो आ जाती हैं जिससे वो मदद नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं. आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आप उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि किस तरह अगर आप किसी की मदद करने की ठान लें तो आपके लिए अल्लाह सुबहाना वाला बहुत ज्यादा आसानियां जो है वो फरमा देते हैं. मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, राह खिदमत ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका मकसद क्या है, आपने इसको कैसे शुरू किया? आप ओवर टू यू सिद्रा.
1: सबसे पहले मरियम, यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट और जो हमारा सलाम मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट्स अ ब्रिलियंट शो. मैंने आपका कल भी एपिसोड देखा, यू आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब. माशाल्लाह माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ.
0: एंड
1: नाउ आई विल स्टार्ट विद, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा, आई एम नॉट वेल टुडे, बट स्टिल मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूं और जो हमारा राय खिदमत का जो मैसेज है वो सारी दुनिया तक जाना चाहिए.
0: बेहतरीन जी, फरमाइए.
1: मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज है वो शेर से करूंगी. अपने लिए तो जीते हैं सभी, अपने लिए तो जीते हैं सभी, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. क्या? बस यही हमारी राय खिदमत का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ये है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम विद एनीवन. यही सोच मेरे भी हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है. तो मैं कहती हूँ कि वट एवर नॉलेज आई हैव और जो भी हम अपना टाइम एनर्जी जो दूसरों के लिए कर सके, ये हमारे लिए आखिरत में यही काम आएगा. दुनिया में तो आपको पता है ये लाइफ कभी भी एंड हो सकती है, लेकिन हमारा अच्छा काम ये सारी जिंदगी याद रखा जाएगा इंशाल्लाह.
0: इंशाल्लाह.
1: नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन कि राय खिदमत क्या है, कैसे ये काम कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ राय खिदमत ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मरियम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी जो टीम मिली

0: है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना सिर्फ हम यूके में काम कर रहे हैं, मेरे साथ ईस्ट लंदन के साथ मेरी बहुत अच्छी लीडर्स हैं, उमे कुलसुम ईस्ट लंदन को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह हमारे काफी जो लीडर्स ईस्ट लंदन के हैं। फिर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो हर शहर में ऑलमोस्ट हमारे लीडर्स मौजूद हैं। तो हम हर लिहाज से, अगर पहले मैं यूके से स्टार्ट करती हूँ कि हम यूके में क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
1: जी
0: तो हमारे व्हाट्सएप के काफी ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, और जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें हजारों लेडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम। जो यहाँ पे परदेश में जो मसला है ना, वो लिसनिंग का है, लोगों की बात सुनने वाला ही नहीं कोई होता। तो
1: बिल्कुल
0: हमने उनको ये कहा कि हम आपको सहारा बनेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस की बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, शाउट आउट दे रहे हैं बिजनेसेस को, कि लेडीज को हम एम्पावर करें कि यू कैन डू एनीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। बस यही छोटा सा मैसेज मैं अपनी टीम को देती हूँ। आगे मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड है सारे, और वो सारे लोगों को कहते हैं कि शाउट आउट फ्री देते हैं कि यस यू कैन डू इट, स्टार्ट करो अपने आप को, हिम्मत करो, और ये डिप्रेशन और ये जो लोनलीनेस है इस कंट्री में, इससे निकलो और अपने आप को जो है हिम्मत पकड़ो, एंड यस यू कैन डू इट। और अगर पाकिस्तान की मरियम बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको पता है, आप खुद भी पाकिस्तान से हैं,
1: जी
0: कि कितने नीडी लोग हैं वहां पे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह करीम वी आर
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। वहां पे वाटर हैंड पंप की बात की जाए, क्योंकि पानी का मसला आपको पता है, साफ फिल्टर वाला पानी बहुत इश्यू है। फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए बच्चों का स्कूलिंग का, तो मुल्तान में हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ का लीडर हमारे माशाल्लाह मुल्तान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोट अद्दू में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद की बात की जाए तो मुफ्ती कारी अब्दुल जब्बार साहब, तो वो हमारे लीडर फैसलाबाद से रन कर रहे हैं, तो फैसलाबाद में मदरसा दीनी तालीम। तो मैं यहाँ पे किंजा का नाम लेना चाहूंगी, हमारी जो टीम लीडर पाकिस्तान है उनको हमने ये टाइटल दिया हुआ है किंजा शहजादी साहिबा को, बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड। मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मेरे पास अच्छी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किंजा पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लीड कर रही हैं, यंग टैलेंट को ऊपर लेके आना। अभी हमारा नात का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नात करो, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ। थैंक यू, ओवर टू यू मरियम।
1: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सिद्रा, यही चीजें जो है ना, ये मोटिवेशन देती हैं। आपको पता है कि एक शख्स जो है वो लीड करता है और फिर टीम जो है वो उसके पीछे उसको फॉलो करती है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत सालों से है वैसे, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी, क्योंकि जब आप अपने कंट्री में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को आप जाहिरा जानते हैं और समझते हैं, लेकिन आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री में, लाइक आपने यूके में स्टार्ट की है, तो उसके लिए कितनी मुश्किलात आपको आई होंगी, कितना आपके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ा होगा, और वहां पे आपने अपनी जो टीम खुद ढूंढी है, बनाई है, आपके साथ लोग कनेक्ट हुए हैं, ये तमाम, ये इजी टास्क तो नहीं है, क्योंकि हर कोई तो मदद तो करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो स्टार्ट कहाँ से करे।
0: वेरी नाइस क्वेश्चन मरियम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यूके के रूल्स रेगुलेशंस लॉज को फॉलो करना। और मैं यहाँ पे जो हमेशा मेरे जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं अपने हस्बैंड का माशाल्लाह नाम जरूर लेती हूँ, मोहम्मद फैसल उस्मानी। तो कहते कि जब भी किसी खातून को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, और बच्चों के साथ छोटे बच्चे हैं, और उनके साथ मैं सारी चीजें मैनेज करना, कम्युनिटी वर्क करना, होस्टिंग, नात खानी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, सारा जो है ये मेरे वालदैन की दुआएं और मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन, मेरे बहुत ज्यादा वो मुझे सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वो ऑफिस जा रहे थे, लेकिन उससे पहले सारा सेटअप किया मेरे लिए, हालांकि लेट हो रहे थे, कहते नहीं मैं तुम्हें सेटअप करके दूंगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और
1: बिल्कुल
0: वाकई में एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना ये इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे सपोर्टिंग लोग मिले हैं, and they are doing wonderful work, mashallah.
1: सही. अच्छा, ये जो खवातीन है, खवातीन के बारे में कहा जाता है कि खवातीन जो है किसी भी फील्ड में जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लोग चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो या पब्लिक प्लेसेस पे भी उनको जाना हो, उसमें जनाब आप बता सकती हैं कि खवातीन का क्या किरदार रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या ये फुली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खवातीन बेस्ड है, जैसे आपने कारी साहब का भी नाम लिया, या फिर जो है इसमें खवातीन को वो मुकाम दिया जाता है या जिस तरह जो वो डिजर्व करती हैं?
0: जज़ाकअल्लाह मरियम. यूके में तो ऑलमोस्ट सारी टीम ही लेडीज की है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो लेडीज के होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो पाकिस्तान में, आपको तो सारा पता है, वहाँ चैलेंजिंग सोसाइटी है. अभी सैलाब आया और कितने ज्यादा अफेक्टेड एरियाज थे, तो वहां पे लेडीज की सिक्योरिटी, मैं अपनी टीम को हमेशा कहती हूँ, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी. कभी भी मैं, मरियम अरसलान कराची की टीम लीडर है माशाल्लाह, तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अकेले डिसीजन ना लो, हमेशा आप अपने हस्बैंड को, पूरी टीम को, तो फिर हमें बॉयज को वहां सपोर्ट लेना मस्ट हो गया था हमारे लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये चैलेंजिंग है, आपको पता है पाकिस्तान की जो सोसाइटी में लेडीज, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, पर स्टिल जो मेरी टीम मेट्स नहीं है, ये मेरी बहनों से बढ़कर है, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि हमेशा, इसीलिए हमने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर्स जो है वो मेंस हैं, और किंजा शहजादी जो है वो, एज आई सेड अर्लियर, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही है.
1: अच्छा सिद्रा, समटाइम ये होता है कि जब भी हम मदद करने का सोचते हैं, हमारे माइंड में ये आता है कि माली वसाइल जरूर होने चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना किसी को जरूरी है. आप क्या समझती हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए वो कहाँ से स्टार्ट करे? क्या वो एजुकेशन पे, या आप कह लें कि किसी की अच्छी तालीम, जैसे तालीम तो है ही, लेकिन वक्त दे दे, तवज्जो दे दे, कोई मशवरा दे दे, क्या ये कोई हेल्प हो सकती है किसी से इन चीजों से?
0: बिल्कुल मरियम, जो हम अपना टाइम दें, एनर्जी दें, जरूरी नहीं है. मैं यही कहती हूँ कि काफी लेडीज ऐसी हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप लोग बस हमारे साथ आ जाओ, हमारा साथ दो, घरों से निकलो. और क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि लेडीज के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो यहाँ पे आके बस वो समझती हैं हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, बच्चों को फुल टाइम दें, तो लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपको अपने लिए भी जीना है. जब मेरे ज्यादातर इवेंट्स होते हैं वो सुबह में होते हैं, और ये जो लेडीज हैं यहाँ पे भी हालात टफ होते जा रहे, सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है, लेकिन मैं लेडीज को कहती हूँ कि बिल्कुल आपकी वाली बात की ये सदका जारिया है, अपना कीमती वक्त निकाल के दूसरों को देना, और आप इस तरह भी आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरों को सपोर्ट दे कर रहे हो. और मरियम, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगी कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये कोशिश की है कि हम सिर्फ माली मदद से नहीं, उनकी सिर्फ उनको पैसे एवरी मंथ भेजते जाए, नो. हमने उस तरह तो वो बिल्कुल वो हो जाएंगे ना कि बस पैसे आ रहे, नो. हमने उनको ना रोजगार स्कीम लगा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, और डिफरेंट शहरों में हमने इनको टी स्टॉल्स, और इनको प्रॉपर गवर्नमेंट से हमने इजाजत लेके लगाई है,
1: सही,
0: ताकि ये कि ये ना हो कि गवर्नमेंट इनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह के, या इलीगल एरिया है, तो हमने गवर्नमेंट से, हमारे माशाल्लाह मलिक ताहिर भाई हैं
1: जी,
0: वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, तो पाकपतन शरीफ से, तो और भी दीगर शहरों से, अगर मैं सबका, अपनी टीम का नाम तो लेना चाहती हूँ, पर मैं सबको ही अप्रिशिएट करूंगी, यूके और पाकिस्तान टीम को, और मेरी यही दुआ है कि हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें, और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते
1: रहें. बेहतरीन सिद्रा, और कितनी प्यारी आपने बात की है कि सिर्फ मदद करना फाइनेंशियली जरूरी नहीं है, आपने उनको एक जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, और उनको एक तरीका कार दिया कि वो किस तरह अपनी अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि डोंट गिव देम फिश, गिव देम फिश रॉड, कि आप अपनी जो है मदद खुद के तहत आप काम करें, उन्हें मुस्तहकम करें, उन्हें स्टेबल करें. टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. See you after that. Stay on Salaam Media.
2: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freeza card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9000. 9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
3: Mmm, Dad, these Frimax chips are so tasty.
4: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
5: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
6: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
7: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
8: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. जी हाँ, बात हो रही है आज दूसरों की मदद कैसे की जाए, किस तरह से उनसे उनको जो है स्टेबल किया जाए, मुस्तहकम किया जाए, और किस तरह से पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम अब दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर आप रोशन कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है सिद्रा भट्टी. सिद्रा भट्टी से हम बात कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन राह खिदमत के बारे में. अच्छा सिद्रा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि अक्सर आप जब किसी की मदद करते हैं तो क्या होता है कि उस मदद लेने वाले की इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है, ये कुछ इस तरह. कोई ऐसी टिप बताएं जैसे जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे से वो उनकी मदद भी कर सकें और जिसकी कर रहे हैं उसको ये फील भी ना हो कि उसके उसको जो है ना लो फील कराया जा रहा है. जरा इस पे रोशनी डालें.
0: मरियम, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आस्क किया जाता है, और वैसे तो इस्लाम में ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि तुमने किसी की मदद की है. तो अगर हम उसकी इज्जत नफ्स को उसका ख्याल रखेंगे सफेद पोश का, तो इट्स सो गुड इन इस्लाम. बट हम जो हैं, अब मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताती हूँ कि हम कैसे काम करें. हमारे पास जो सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हमारे पास केस आते हैं, हमारे लीडर्स उनको वेरीफाइड करते हैं. और यस, वी डू आस्क देम कि हम आपको, क्योंकि आपको पता है एक एक पैनी हमारे पास अमानत होती है. हम उनसे जरूर कहते हैं कि आप हमें वीडियो बना के दें, लेकिन ताकि हम बताएं कि आपकी अमानत हकदार तक पहुंची है. लेकिन अब हम उनकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखते हैं कि हम उनकी जो हमें, फॉर एग्जांपल, हम उनसे परमिशन लेते हैं पहली चीज, और ज्यादातर ये होता है कि हम उनका फेस ही नहीं दिखाते. हम उनके सिर्फ हैंड्स को दिखा रहे होते हैं कि हमारे एक, या उनकी आवाज सिर्फ रिकॉर्ड कर देते हैं. तो जैसे हमने राशन पैक्स दिए जी. तो ख्वातीन की सिर्फ आवाज यूज हुई थी. तो ये इसलिए था कि ताकि हम मोटिवेट करें अदर्स को कि आप लोग भी, एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हमारा साथ दें. लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर वीडियोस कहीं पे भी आए. तो हमने उनकी प्राइवेसी को मलूज खातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, और बस हम एज ए एविडेंस स्लिप के आपको मनी रिसीव हो गई है, आप एक मैसेज कर दें. क्योंकि हमें भी अपने आप को लॉस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये यूके यहाँ पे एक एक एविडेंस सबमिट होता है कि हमने आपने एक आपके पास जो रकम आई थी आपने वो कहाँ यूज की है, तो फिर हमने अपने आप को भी इस तरह कवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सही। अच्छा सिद्रा माशाल्लाह, ये भी मैं बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को भी, अपने लिसनर्स को भी, कि माशाल्लाह आप इलेक्शंस भी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। आप डेफिनेटली, ये कोई बात नहीं है हर बंदा की विनिंग ही हो, तो आप खुद की जो पर्सनैलिटी है ना, यही बहुत बात है कि आप में इतना करेज है कि आपने उन इलेक्शंस में जो है आप स्टैंड किया। काउंसलर का इलेक्शन था, आप उसके बारे में जरा रोशनी डालेंगी कि कैसी कैंपेन थी आपकी, आपके लिए लर्निंग लेसन उस कैंपेन से क्या था?
0: मरियम, बिल्कुल, मैं एलम पार्क, हमारा ईस्ट लंदन की तरफ एक एरिया है, वहां की तरफ से अपनी मार्गरेट जो हमारी एमपी है, आई लाइक हर सो मच, शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क माशाल्लाह, एंड शी इज द वन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है मैडम मेयर, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि सिद्रा तुम 10 साल से लेबर से हो और तुम जस्ट आओ, इस तरफ आओ, स्टेप लो। तो मुझे जो इस तरफ किया गया था एलम पार्क से नॉमिनेट, और अगर तो मुझे आपको पता है यहाँ पे सारे एरियाज थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसलिए मुझे कहा गया था कि आप ज्यादातर जो और एरियाज हैं वहां पे आके हमारी हेल्प करें, तो लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, लर्निंग है, आप सिस्टम में आए, चीजें देखें, लर्न करें, ग्रो करें, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको यस कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिस्पांस बहुत ग्रेट आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि मैं फ्यूचर में अच्छा और खुलकर कैंपेन करूंगी ओपनली, एंड देन वी कैन अचीव मोर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
1: जबरदस्त, यही बात है कि आप जिंदगी में हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीख कर आपको वो एक स्टेज आती है कि आपको वो कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। इसी तरह ये बहुत, मैं बहुत इम्प्रेस थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जब लोग ऐसे नॉमिनेट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो है ना बड़ी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा सिद्रा, लास्ट जो है फ्यू मिनट्स जो है हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट के चल रहे हैं आपके साथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके फ्यूचर प्लान्स राह खिदमत के, और ये भी पूछना चाहूंगी माशाल्लाह आपने इतना काम किया, आप क्या समझती हैं कि एक चीज वो रह गई है जो मैं जरूर करना चाहूंगी और राह खिदमत ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो रोशन करना चाहूंगी, बताइए।
0: मरियम, मैं जो है ना, पहले तो एक शेर जो हमेशा मेरे दिमाग में पीछे चल रहा होता है वो जरूर पढ़ूंगी, तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम आम कर जाऊं। तो 100 बातों की एक बात, मोहब्बत बांटेंगे, पॉजिटिविटी बहुत अहम करती है किरदार, पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लाने दें और खुशियां बांटें। वही बात अगेन कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, अपनी तरफ से 100% करें, बाकी अल्लाह की जात गफूर रहीम है, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबियां देगा, कभी मायूस ना हो। थोड़े से चीजें मुश्किलात होती हैं शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप स्टेप लें, हिम्मत करें और आप कर जाएंगे। और हमारे फ्यूचर प्लान्स राय खिदमत के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे रात को नींद सुकून से आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मैं रातों रात बहुत ही ऊपर चली जाऊं, नो, मैं बेबी स्टेप्स लेके ऐसे चाहती हूँ कि मेरा जमीर मुतमईन हो और मेरी टीम सेटिस्फाइड हो और हम सब आराम से काम करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हम चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे कुर्बानी का प्रोजेक्ट, राशन पैक्स, रमजान की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए, और दीनी दुनियावी तालीम की बात की जाए, बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो अल्लाह ताला इज्जतें दे रहा है, दुआ यही है कि आखिरत में भी ये चीजें हमारे काम आ जाए इंशाल्लाह।
1: बेहतरीन सिद्रा, बेहतरीन आपका मैसेज था, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और जरूर इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगी और लोगों के लिए आप राह हिदायत बनती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपकी इस खूबसूरत साथ का, इस खूबसूरत बात का, जजाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: Walaikum Asalaam. Thank you so much for having me. Thanks to Islam Media. Take care. Have a very nice day.
1: Fee amanillah. जी ये थी हमारे साथ सिद्रा भट्टी और इनके साथ मिलकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं वो इंसानियत की खिदमत जो है वो ये कर रही हैं और मेरे ख्याल में कि इससे बेहतरीन काम दुनिया में कोई नहीं है दुनिया के आखिरत में कोई नहीं है तो अल्लाह सुबहान व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे और इन जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़ जाएं और दुनिया में जहां जहां हैं वो अपनी तौर पर लोगों की मदद इंसानियत की खिदमत कर सकें जी वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने दूसरे गेस्ट के साथ उनके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे वो जो है बहुत सारे पेरेंट्स को कनेक्ट करेगा क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया हैंडलिंग की किस तरह सोशल मीडिया को हैंडल किया जाए बच्चों के साथ बड़ों के साथ और खुद आपकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है इस पे हम आज बात करेंगे हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट मौजूद होंगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया
9: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861-786-243 for more information.
10: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil, now we're cooking.
11: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415. Or visit www.albaytlodge.co.za.
12: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential health care, and a safe home. Your sponsorship is not just support. It's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
13: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: जी मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी मैं हूं आपके साथ और जैसे कि आप जानते हैं कि सलाम मीडिया की उर्दू ट्रांसमिशन जो है स्पेशल एडिशन जो है वो चल रहा है और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम हाशमी और मेरी कोशिश यही है कि हम जो है ऐसी गेस्ट आपके प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में लेकर आए कि जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले कुछ ना कुछ जो है हम उनसे नॉलेज जो है वो गेन कर सके हमारे साथ हमारी दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सॉलिसिटर हैं माशाल्लाह लॉ को बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं क्या कहूँ उनके बारे में वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है और यही है कि आप उनसे मिलेंगे उनसे बात करेंगे और आपको पता लगेगा कितनी माशाल्लाह उनमें स्किल है कितनी माशाल्लाह उनमें जो है उनको नॉलेज है और कितना ज्यादा उनसे बात करके आपको आसानी होती है अगर आप किसी जगह फंस गए हैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही अगर आपके जो है माइंड में या आपको कोई लीगल चीजें एडवाइस करने वाला नहीं है तो आई थिंक वो जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं, जहां पर हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से केसेस को हैंडल करते हैं. तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मिसेज रोमाना कौसर. आइए अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रोमाना. कैसी हैं आप? ठीक है रोमाना?
14: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. रोमाना बात हो रही है यूके की. यूके का वेदर आज कैसा है?
14: आज माशाल्लाह बहुत बहुत दिनों के बाद आई थिंक आज बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे.
1: जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा रोमाना, बात आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े लोगों के दिलों को छू जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बात का वो ये है कि अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, कौन सी चीज जो है ना वो आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, या आपके पास पर्सनल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल चीजें. हम समटाइम ख्याल नहीं करते, बहुत सारी चीजें हम अग्री कर देते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग. और ये आप जरा इस पे रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को साइन अप कर रहे हैं या आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको उसकी नॉलेज होना कितना जरूरी है. जरा इस पे रोशनी डालिए, बताइएगा.
14: जी डेफिनेटली ये बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप साइन अप कर रहे हैं, यू नो, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उनका बैकग्राउंड, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें उनका, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं या पिक्चर्स सेंड करें, क्या वो स्ट्रीम्ड है, आधाई यू नो आपकी वो इन्फॉर्मेशन वो डेटा रखते हैं कि नहीं. फेसबुक पे भी ये टॉपिक रेज हुआ था एंड जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, इस पे भी रेज हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने कहा कि जो जब हम साइन अप करते हैं उसमें बस रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पढ़ता है, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता. एंड अगर कोई पढ़ भी लेगा उसमें इतनी उनको शायद नॉलेज ना हो कि एग्जैक्टली कोई भी क्लोज क्या कह रहा है, कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिटेन करेंगे जो आप डिटेल्स दे रहे हैं या जो आप फ्यूचर में शेयर करेंगे, क्या वो डेटा रिटेन होगा. आई मीन नॉर्मली आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे, मतलब एवरीथिंग, यू नो, इट्स हार्ड टू कंट्रोल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को एंड कौन से प्लेटफॉर्म कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज कर सकते हैं या रिटेन करते हैं.
1: सही. अच्छा कौन सी चीजें जो है हम पोस्ट कर सकते हैं हमारे लिए सेफ है, जैसे कि पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं, उनसे पहले कंसेंट जरूरी है, इजाजत जरूरी है, या हम जो है उसको एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं?
14: आई मीन आजकल बिकॉज यू नो सोशल मीडिया सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म एंड ये नहीं कि कोई एक ऐप, इट्स लाइक एवरी यू नो बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स है. कुछ लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली पॉजिटिव वे, अगर हम देखें तो यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, आपको न्यूज अपडेट्स देने के लिए और कोई भी बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए सब यूज करते हैं. तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट्स गुड टू शेयर कि आप चीजें शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को नॉलेज मिलती है. सो ये मतलब इट्स इन अ गुड वे, बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या चीज सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहे हैं. बिकॉज वंस जब आप शेयर करते हैं इट बिकम्स पब्लिक. अगर आपने उस पर यू नो ऑप्शंस उस पे रखे कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो वहां से तो कोई भी वो चीज यूज कर सकता है, फोटोज या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो उस पे, कोई भी पिकअप करके उसको यूज कर सकता है. लोग शेयर करते हैं, लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो ये सारा यू नो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दैट. तो ये यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को.
1: सही. अच्छा ये जो आपने जैसे बात की है पब्लिक की, कि इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, कि आप किसी की पिक्चर या किसी का प्रोफाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहां पर फिर भी अगर आप इनकी फ्री टू यूज या पब्लिक चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो परमिशन लेनी जरूरी है?
14: ऐसा सच नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे. अगर आप देखें अगर किसी की प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल अगर पब्लिक है और मैं कोई भी इमेज शेयर करती हूँ, तो द फैक्ट आई हैव मेड इट पब्लिक, किसी को मैं स्टॉक नहीं कर सकती. यू नो आई वुडंट नो कि किसने स्क्रीनशॉट लिया है, किसने फॉरवर्ड किया, किसको आगे किस कहां पे लगाई है, मैं भी अपने प्रोफाइल पे शेयर किया है. सो उसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है.
1: तो आप समझती हैं कि कंट्रोल होना चाहिए?
14: इसका ये है सोशल मीडिया इतना वो इट्स सो फास्ट कि आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते. यू नो अगर मैंने कुछ पब्लिक डाला है देन anyone has the right to take a screenshot and share
1: notifications aa jati hain aur mera khayal hai ye bhi bombardment logon ko bilkul pasand nahi aati ki hame baar baar notify ho raha hai ki ye jab humne cheez public kar di ye bhi bada easy hai isko agar unhone kiya hai to ye aapki zimmedari hai aapne kis tarike se apni cheezon ko jo hai use karna hai apni pictures apni videos ko jo hai unki privacy ko kaise maintain karna acha romana bada important hai किसी की यानी कि आप समझते हैं कि आम इंसान उसके लिए ये कितना समझना जरूरी है कि उसके सोशल मीडिया पर बुनियादी हकूक क्या है बेसिक राइट्स क्या है क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना इतना ही जरूरी है इसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए
14: डेफिनेटली होनी चाहिए वर्कशॉप्स स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है जो शायद सोशल मीडिया आजकल यूज करते हैं मे बी अभी तक सीख रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके राइट्स क्या है उनको चीजें कैसे यूज करनी है समटाइम्स यू नो किसी ने कभी कोई ऐप यूज नहीं किया हो मे बी वो कुछ पोस्ट कर दे यू नो अपनी पर्सनल पिक्चर्स शायद उनको नहीं लाइक इवन बच्चों की भी पोस्ट कर देते हैं उनको नहीं पता होता कि ये लाइव जा रही है या पब्लिक में है एंड कोई भी इसको मिस यूज कर सकता है इसको कॉपी कर सकता है तो उनके लिए वर्कशॉप्स होनी बहुत जरूरी मैं समझती कि हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए एंड इसके ऊपर आई बिलीव यू नो जहाँ पे मैं रहती हूँ लोकली वी डू प्रोवाइड दैट सर्विसेज वर्कशॉप्स होते हैं इसको सिखाने के लिए भी यूज करने के लिए भी एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन
1: जी रोमाना ये जो फेक अकाउंट्स बनते हैं तो इस पे लीगल एक्शंस क्या लेना चाहिए अगर किसी के फेक अकाउंट्स बन जाए या कोई भी आइडेंटिटी आपकी लीक हो जाए तो उस पे आपके राइट्स क्या हैं आप क्या कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं
14: जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा इसमें बहुत सारे आजकल ऐसे हो रहे हैं क्योंकि एज अ सोलिसिटर हम जैसे डिफेमेशन केस अगर किसी ने कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिक पब्लिसाइज की है कहीं भी किसी भी मीडिया पोस्ट पे डाली है आप उसको स्टॉप कर सकते हैं आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं यू कैन गेट एन इंजंक्शन कि आप उस आइटम को उस पोस्ट को रिमूव करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि जो एक्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने उनको रिपोर्ट करना होता है फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फेक आईडी बना के आपकी कोई पिक्चर या इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है तो आप फेसबुक के ऊपर उनकी सेटिंग्स में इन्फॉर्मेशन होती है कि आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पोस्ट तो फर्स्ट स्टेप आपने वो लेना होता है एंड आप फेसबुक को एक्सप्लेन करना होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आइटम या पिक्चर रिमूव हो जाए सो जब वो रिमूव भी हो जाती है अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड अगर रिमूव नहीं होती फॉर एग्जांपल आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं आपको कोर्ट के थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन कि वो चीज रिमूव की जाए अब हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो आप मतलब आपको कोर्ट में भी जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपको कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है यू नो आपकी कोई प्राइवेसी या कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसको आप स्टॉप करना चाह रहे हैं समटाइम्स ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिससे लोग अपसेट हो जाएं या यू नो मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो एंड किसी ने कोई जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्ग्यूमेंट ऑफ और एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ हो और किसी ने वो पोस्ट कर दी है चीजें शेयर की हैं उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं
1: सही अच्छा रोमाना एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये आपने जैसे बात की है कि हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या ये ट्रू है वो चीज वहां से डिलीट हो जाती है कि नहीं होती
14: अनफॉर्चुनेटली नहीं होती आप ऐप पे अगर देखें या कहीं भी किसी ने पोस्ट की हो वहां से वो डिलीट चीज हो जाएगी लेकिन एक्सटर्नली किसी ने कहां पे और कहीं पे डाली है अपने ही सोशल मीडिया अपनी प्राइवेट प्रोफाइल पे डाली है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते इट्स सच अ लाइक इट्स सच अ ट्रेंड के लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो अगर किसी ने कोई चीज डाली है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करें कि उसको रिमूव किया जाए हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे वो रिमूव हो जाए लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वे कहीं और उन्होंने शेयर किए होंगे अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेट यू नो प्राइवेट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं एंड कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे अब जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है इट्स एवरीवेयर you know social media instagram WhatsApp,
1: even you delete it but it's everywhere it is true
14: it's everywhere yes. you can't control that even the courts cannot control that ki har jagah se aap remove kar
1: सही. अच्छा, हम जो पर्सनल डाटा, अपनी लोकेशन, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जब हम अपनी जाहिर एवरीडे सब लोग शेयर करते हैं, तो हमें ये कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हमें पता चले कि हमारा डाटा कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, या अगर कोई पर्सनली कलेक्ट कर रहा है तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा. क्या ये जब ये एप्स बनाते हैं तो इनमें ये ऐसी चीजें क्यों नहीं डालते, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों इसमें ऐड नहीं होता है? आप क्या समझते हैं इसकी जरूरत है?
14: हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता ये कि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इनको ले रही है, लेकिन किसी भी ऐप में अगर आप देखिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उनमें ये क्लोज होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इट्स देयर प्रॉपर्टी कि आप उनके ऐप पे डाल रहे हैं, बट दे कांट मिसयूज इट ऑब्वियसली, लेकिन उनके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चीज डालूं देन दे कैन कंट्रोल कि अगर मुझसे वो कहे कि ये दिस इज ऑफेंसिव आपको रिमूव करना है. अब एग्जाम्पल आप लें टिकटॉक पे, अगर कोई भी चीज टिकटॉक पे आप डाल रहे हैं वेदर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है या नहीं, टिकटॉक आपको स्टॉप कर सकता है ये चीज डालने से अगर वो आप उनके कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं. इन द सेम वे इट मीन्स के टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी वीडियोज और जो भी आप डाल रहे हैं वो रखते हैं उनका रिपोर्ट, उनके पास होता है, दे आर रिव्यूइंग व्हाट यू पुट डाउन एंड दे कैन आस्क यू टू रिमूव इट एंड दे कैन डिलीट इट देयरसेल्फ. सो इसमें आई थिंक डिफरेंट एप्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो कोई भी आप यूज करने से पहले आपको उनके रेगुलेशंस डेफिनेट करने चाहिए.
1: अच्छा, ये जो बच्चे हैं आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी एप्स हैं जिसपे वो बात भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये क्या ये सेफ है और क्या ये यूज होना चाहिए?
14: आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड एप्स अगर आप बच्चों के हिसाब से अगर देखें देयर्स टू साइड्स टू इट. एक तो एक पॉजिटिव साइड है कि सोशल मीडिया से आप चीजें सीख सकते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, आप लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन. सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला हुआ है कि यू नो जैसे अगर किसी ने कोई पोस्ट वर्क या कुछ करना है तो उस पर वो रिसर्च करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पीपल यूज इट, चिल्ड्रन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड देखें, social media is being misused by children, you know, and it's affecting them, it's affecting their well-being. Bahut saare incidents humne aise dekhe hain ki bachon ne misuse kiya hai na unko, like for example grooming ka shikar hote hain, different things, you know. Isme parents should have a control ke unke bacche kya use kar rahe, kis extent tak use kar rahe.
1: Ji, parental responsibility. Ji, parental responsibilities pe inshallah hum is break ke baad baat karenge. Time ho jata hai, ek chote se break ka, milte hain aapse is break ke baad. Stay tuned on Salaam Media.
15: Right now in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
16: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
17: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
18: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
19: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: Gee, welcome back with mid-morning talk with Mariam Hashmi on Salam Media from Johannesburg. Gee, haan, hum baat kar rahe hain online data control ki, ki kis tarah aap apne data ko control kar sakte hain, apni information ko aap, apni privacy ko aap safe kar sakte hain. Acha, Romana, COVID ke baad online education system ka bahut zyada rujhan badh gaya. Zahir si baat hai ki unki phir bachon ki personal information jo hai, wo chahe as a school aap store karte hain, to usme walidain ka kitna right hai, kitna haq hai ki wo apne bachon ki information ke bare mein jaan saken ki kitne saal tak unke bachon ki information us school ke record mein record rahegi.
14: Yes, definitely. Parents ka full right hota hai, especially education ke hisab se. Parents have the right ke wo school se information le sakte hain ke jaise aapne kaha ki information kitni store, you know, kaun si information store ki gayi hai bachche ke bare mein and kab tak hogi, because online to it could be forever. Lekin pehle jo ye system tha ke on paper aapke reports se aapke jo school work aapne kiya hai wo sari information on paper rehti thi, lekin ab ye sab kuch online hai. Even homework bhi hota hai wo online apps pe hota hai, classes bhi online hoti hai. So the parents ke paas definitely rights hota hai ke aap school se contact kare, unko approach kare aur information le.
1: Sahi. Acha, Romana, schools mein aap kya samajhti hain ke curriculum mein unki usme add hona chahiye ke bachchon ko apni online safety ka kis tarah khayal rakhna chahiye, iski aap kitni ahem zarurat mehsoos karti hain?
14: Ji, isme ye zarur bahut zaruri hai. I mean ispe kafi log jo hai later on school ke baad bhi isme aap iske upar pure courses bhi kar sakte hain, jise cyber crime ke upar bhi ek aap education le sakte hain. Lekin I think is time is stage pe school ki education mein bhi bahut zaruri hai. School mein sikhana chahiye ke agar aap social media use kare to usko kaise effectively use karna hai and safety kaise rakhni hai. Well, what's really here, because it's not just apps and, you know, social media apps, even with games, communication external logo se aap kar sakte hain, aapko pata hona chahiye ki aap kis se communicate kar rahe hain. So it's definitely bahut zaruri hai.
1: Sahi. Aajkal jaise games wagaira bahut zyada hain, to parents definitely bahut sare aise parents hain jinko is technology ka pata nahi hai, to aap zara unko advice karengi ki wo kis tarike se apne bachon ke us gaming data ko control kar sakte hain, ki wo kahan apni information, apni locations wagaira wo different jagahon pe share kare, kyunki kuch apps ya kuch games aisi hain jo aap se location aur aapki information mangti hain, to kya un apps ko ya un games ko avoid karna chahiye, ya agar kar le to phir uske liye kya safety concerns hone chahiye?
14: I think it's very difficult nowadays ke aap bachcho ko stop kare, because agar aap kisi bhi game se ya kisi bhi app se unko stop karenge, they bachche dusre bachcho ko dekh ke they want it as well, so unko bhi hoga ki hum bhi matlab ye game le ya download kare. But I think most importantly apps ke jo settings hoti hain aapko unko use karne se pehle unko study karna chahiye ki unki aap location privatize kaise kar sakte hain. Ab har app mein zaruri nahi ki aapne definitely apni location deni hai, and agar aap naam bhi de rahe bachche ka then wo bhi aap change kar sakte hain, you don't have to have the actual name.
1: Exactly.
14: So I think jo settings mein hota hai wo definitely parents ko properly check karna chahiye, aur agar wo nahi samajhte then you can get advice le sakte hain logo se, external advice information aap le sakte hain ki app ke upar, you know, advice kare ki isko kaise control karna hai. Kuch parents hote hain jinko nahi samajh aati ya understand nahi hota ki wo apps kaise chalte hain, but definitely location jo hai aap you can hide it, aap usko publicize nahi kare.
1: राइट अच्छा रुमाना बहुत इम्पोर्टेंट आजकल की इस डिमांड बन चुकी है या जरूरत बन चुकी है चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की एआई टूल्स मैं किसी टूल का नाम नहीं लूंगी लेकिन हम एआई टूल्स की बात करते हैं बहुत एजुकेट भी करते हैं लेकिन हमारा डाटा जो है वो वहां पे स्टोर भी हो रहा है बच्चों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डेफिनेटली आप स्टोर करवा रहे हैं या कर रहे हैं ये कितना जरूरी है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है या इन टूल्स पे आप टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके बारे में आप क्या कहेंगी
14: Yeah, definitely. I would not suggest that you rely on her tool ke upar rely kare and you can't trust because AI is such a large tool that everyone is using it.
1: Everyone, yes.
14: In a positive way, or even like if someone's misusing it, you have to be very careful that you अपने बच्चों की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटोज आप किस तरह उसमें ऐड कर रहे हैं उसको यूज करने का यही होता है ना कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने पिक्चर्स अपलोड करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं एंड ये होता है कि लोग फ्यूचर में मिस यूज कर सकते हैं स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स
1: बिल्कुल और ये जो AI है डेफिनेटली इसमें इसने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है बहुत ज्यादा तरक्की इसने कर ली है तो इसका जो है इसका सही मेरा ख्याल है नॉलेज होना हर पेरेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एजुकेशन भी और डॉक्टर एडवाइस भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप AI से ही पूछते हैं और इनसे एडवाइस लेते हैं लेकिन यह है कि फिर भी जो लोग हैं प्रॉपर डॉक्टर्स हैं प्रॉपर टीचर्स हैं जो वो एजुकेशन दे सकते हैं तो वो मेरा ख्याल है ऑनलाइन हम इस तरह की चीजें हासिल ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल वे से सीखने में और ऑनलाइन सीखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है बहुत शुक्रिया रुमाना कोई मैसेज देना चाहें आप हमारी ऑडियंस को हमारे लिसनर्स को कि किस तरह से जो है वो अपने आप को भी अपने बच्चों को भी अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला बता दें कि भाई ये आप कर लें और आइंदा से इस चीज का ख्याल रखें
14: I mean, एक छोटी सी मतलब a lot of parents ये स्क्रीन टाइम रख सकते हैं जैसे लिमिट रख सकते हैं कि बच्चा कित कब तक मतलब स्क्रीन टाइम यूज करे इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली बच्चे फोन पे होते हैं
1: और इंटरनेट का बहुत बेजा इस्तेमाल है जैसे यूट्यूब का बहुत यूट्यूब किड्स है वो भी बच्चे कई नहीं यूज करते कि ये बिल्कुल जो है हमारी एज के मुताबिक है या नहीं है लेकिन आप उनके कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें जो है आप नजर रख सकते हैं लेकिन बच्चे भी आपको रुमाना एक ये चीज भी बड़ी फील होती है कि बच्चों को ये लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा हमारे पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है तो ये बैलेंस भी किस तरह रख सकते हैं हम ये भी जरूर अपने मैसेज में
14: जाना पड़ता है उनको देनी होती है इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी ऐप पे किसी चीज पे लिमिट एज लिमिट है तो उनके फायदे के लिए यू नो सो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन स्पेशली यंग टीनएजर्स दे मे नॉट अंडरस्टैंड लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि इसकी ये बाय लॉ है यू नो इट्स नॉट यू नो कुछ एप्स जो होते हैं अंडर 13 से आप नहीं यूज करते लेकिन बच्चे यूज कर रहे होते हैं लोगों ने डाउनलोड किए होते हैं एंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नीड टू यू नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी So my advice would be just have to be really careful with what you allow your children. Lekin there are measures that parents can take. Screen time protect kar sakte hain apni content jo wo dekh rahe hain wo age limit mein dekha jaye.
1: सही मतलब आपका पेरेंटल कंट्रोल जो है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए बहुत शुक्रिया रुमाना इतनी खूबसूरत नॉलेज का इतनी जबरदस्त जो है इन्फॉर्मेशन का और बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं अल्लाह सुभान व तआला आपके लिए बहुत आसानी करे और आप हमें ऐसे ही लीगल एडवाइस जो है वो देती रहेंगे बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़